0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सिर्फ आप प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out, or a message for someone special, send your name, space, your song name, and your message to 054-309-1062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत।
2: बिजी दिन हो या फिर टफ शेड्यूल, अपनी एनर्जी और एक्टिव लाइफस्टाइल का ध्यान रखना जरूरी है। डाबर शिलाजीत के साथ रहिए रेडी फॉर योर एवरीडे चैलेंजेस।
1: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
3: Ready, throw! Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: दो लोगों में नहीं बंटते, सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन, आपकी जीत डाबर शिलाजीत। Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:07।
1: Bollywood.

0: What is your opinion on reboot songs?
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: मतलब there's two lines of thought, right? एक तो कि मतलब क्यों, why? हर्ट और छेड़ो और सोता हुआ शेर, मतलब ऑलरेडी एक अमेजिंग सा सॉन्ग है, मेड इन द पास्ट, सुपर हिट हो चुका है, उसको वापस से क्यों करना. द सेकंड लॉजिक इज, एंड आई एम फॉर द सेकंड लॉजिक, यार मतलब अगर नहीं कुछ सूझ रहा ना, कुछ ओरिजिनल अगर नहीं आ रहा है तो फिर रिबूट ही कर लो, लेकिन कम अप विद सम इंटरेस्टिंग म्यूजिक. फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट रियलाइज इट, बट दिस इज ऑल्सो लाइक अ रिबूट ओनली ना, बट यू डोंट माइंड इट सो मच बिकॉज द रिबूट इज सो गुड. यार रीबूट और नॉट रीबूट, इन केस ऑफ अ सॉन्ग दैट यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर, जो आपको बूट करके उठाता है रोज सुबह, देन लेट मी नो द टॉप ऑफ योर प्लेलिस्ट. आजकल कौन सा वो गाना है जो दिमाग में चिपक गया है फेविक्विक लगाकर, लेट मी नो. द नंबर 0543091062, दैट्स द नंबर, व्हाट्सएप मी 0543091062. शुरू हो गया है वो शो जो आपकी बैटरीज रिचार्ज करता है, इट्स कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड, एंड द फर्स्ट स्टार इज द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट. गुड मॉर्निंग
1: बिग 106.2.

0: Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ie.
1: And now for some good news on this Wednesday morning.
2: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हमने वरना न्यूज़पेपर फ्रंट पेज की सुने तो फिर सब बैड न्यूज़ होती है. सब गुड न्यूज़ आल्सो हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. उसकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए. सो व्हाट्स द गुड न्यूज़ ऑन दिस वेंसडे मॉर्निंग? देयर इज अ ट्री दैट हैज बीन डिस्कवर्ड इन ब्राजील. ब्राजील में एक पेड़ मिला है दैट कैन फाइट और डिस्ट्रॉय COVID-19. यार एक पेड़ से COVID-19 कैसे फाइट हो सकता है? मतलब नेक्स्ट टाइम यू हैव कोविड तो क्या झाड़ फूक करना पड़ेगा लिटरली? ऐसा नहीं है. इस पेड़ का जो पत्ता होता है, द लीफ ऑफ कोपाइफेरा लुचेंस, द ट्री दैट इज नेटिव टू ब्राजील्स थ्रेटेंड अटलांटिक फॉरेस्ट, इसमें एक पावरफुल नेचुरल कंपाउंड होता है जो कि सार्स COV2 वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकता है. तो नेक्स्ट टाइम यू हैव कोविड देन इसकी कुछ मरम्मत करके दवाई में बनाकर अगर आप खाओगे तो इससे कोविड refuses to multiply, and then that's it. I mean, that's the most powerful natural shield against virus. Just goes to show कि मतलब एक तरफ दुनिया में कहीं पे कोई बीमारी आती है तो उसी दुनिया में नेचर में there is another like a cure for that also, provided we are ready to look for it. हाँ, मतलब अपने खुद की ही दुनिया के बारे में अभी तक we are still learning and we are heading out to find out those 100 आसमांस beyond. हाँ, थोड़ा सा philosophical हो गया है माहौल आज सुबह. हाँ, talking about so Asman, here's Arman Malik with the song. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
3: बोंजूर।
4: नी हाओ।
3: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
5: Wow, your hair color looks stunning.
6: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
5: Yeah, right.
6: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
5: Really?
6: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
5: I'm buying it right now.
6: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
7: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
8: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 7:27 on the clock. Very dusty it was yesterday. Aaj bhi it's going to be a bit overcast, but that's later in the day. Right now it's nice and sunny. Starts this Wednesday morning. Humidity at 45%, 38 degrees Celsius right now. Hawa ki raftaar 11 kilometers per hour. Highs of 41, lows of 36 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Lijo George with Jana Samjana, right here on Big 106.2. Isn't it amazing? एक तरफ जहाँ पर धूम धड़ाके वाले जो फिल्में हैं जैसे कि धुरंधर एंड देन मिर्जापुर, द मूवी इज ऑल्सो गोन कम आउट वेरी सून, कांट वेट फॉर दैट वन, वहीं दूसरी तरफ वेरी स्लो बर्न रोमांटिक पहाड़ों में कैफे खोलने का मन करवा दे वाले शोज लाइक मुसाफिर कैफे आर ऑल्सो डूइंग इक्वली वेल.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Nahi, don't get too financial on me. When I say equally well, doesn't mean ke bhai Dhurandhar wale numbers. It's a small little OTT show on Netflix that people are actually loving as a nice contrast to all the dhoom dhadaka that we've come to expect from films like Dhurandhar. And yeah, I mean, I'll be honest, it's really not my cup of tea. It's a bit too slow burn for me. I prefer the dhoom dhadaka. Lekin people are really appreciating the show and मसूरी भोपाल का मिक्सचर है. विक्रांत मस्ती ये परफॉर्मेंसेज की काफ़ी तारीफ हो रही है. वेदिका पिंटो इज इन इट, महिमा मकवाना गुड परफॉर्मेंसेज बाय द सपोर्ट कास्ट एज वेल, आदिल हुसैन इज ऑल्सो इन इट आई थिंक, एंड देन या द सॉन्ग्स आर डूइंग वेरी वेल. सिर्फ फिल्मों के गाने हम आपको थोड़ी सुनाते हैं, हम OTT के गाने भी आपको सुनाते हैं. और ये जो पहला घंटा हमारे शो का होता है ना 7 से 8 का, ये वो घंटा है जहाँ पे दोस्तियाँ होती हैं, यारी होती है. एंड जो फर्स्ट आर के हमारे फ्रेंड हैं गौरव, होप यू डूइंग वेल, होप यू हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज. ही सेड हाई सेड कैन वी प्लीज डू नॉट प्ले डू दरमियान फ्रॉम मुसाफिर कैफे. ऑफकोर्स कमिंग राइट अप रेखा भारद्वाज की आवाज़ है आफ्टर ऑल. आई मीन व्हेनेवर यू लिसन टू दिस वॉइस इट ऑलवेज मैनेजेस टू क्रिएट अ बिट ऑफ मैजिक. साथ में सम न्यू कमर्स राघव कौशिक एंड अमृता सलूजा एज वेल. हियर्स गौरव्स रिक्वेस्ट दरमियान फ्रॉम मुसाफिर कैफे. इन केस यू हैव गॉट अ रिक्वेस्ट व्हाट्सएप 0543091062.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, The Beat of Bollywood.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:06।
1: Bollywood.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
2: Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
4: Insurancemarket.ae. Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
5: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
8: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: Well, the weather is the big talking point up until Friday because there's a safety alert that's been issued by the Ministry of Interior and the NCM. Barish expected till Friday, especially eastern and southern UAE, especially during the afternoon. Lekin Dubai mein barish ke kam hi chances hain. Weather's temperature is going to go up to 45 degrees Celsius on an average. Winds could reach 40 kilometers per hour. Reduced visibility as well. So drive safely.
8: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: 92.2 The Beat of Bollywood.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. The Big Mix, weekdays 1 to 5 p.m. only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
2: Ready, throw!
3: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Mm. Order 2 or more eligible items for 25 dirhams each and receive 1 collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
4: Hey, jaldi hata.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: मॉर्निंग 8:25 ऑन दिस वेंसडे की सुबह। यूजुअल ट्रैफिक नजर आ रहा है 11311 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा। बिट ऑफ अनयूजुअल ट्रैफिक एट इंडस्ट्रियल एरिया 12 एंड 6 के बीच में जो सड़क है यहाँ पर क्रैश इज रिपोर्टेड, सो बी केयरफुल। थर्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रीट की मैं बात कर रहा हूँ एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स मलिहा स्ट्रीट। या सो In case you have more information about this or any other traffic situation, if it's safe to call, give me a call 800-1062. Iske alawa 611 par bhi heading south going towards Alavir, getting a bit busy. Also around Arabian Ranches ki taraf jata hua traffic on 311.
0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग, विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
6: आपकी जीत, डाबर शिलाजीत, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
9: अभी देख के वेदर लगेगा नहीं, लेकिन देयर इज एन एडवाइजरी आउट देयर एंड बी वेयर, देयर माइट बी फ्लैश फ्लड्स इन सर्टेन एरियाज अराउंड द यूएई, स्पेशली सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। टिल फ्राइडे एक्सपेक्ट अनस्टेबल वेदर। इट्स 40 degrees Celsius राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 35%, विंड्स ब्लोइंग एट 13 kilometers per hour, हाईज ऑफ 42, लोज ऑफ 36 राइट नाउ।
0: अल रास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2, बिग 106.2 सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae।

0: 101.2.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: Sia, self-drive's new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
0: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy.
4: Ready, throw!
5: Papa John's is celebrating Disney and Pixar's Toy Story 5 with Toy Story 5 personal pizzas. Order two or more eligible items for 25 dirhams each and receive one collectible per qualifying order while stocks last. See Disney and Pixar's Toy Story 5 in cinemas now. Better ingredients, better pizza. Papa John's. Order now.
6: Hey, jaldi hata tera khada na. Chal hata. Are jaldi hata.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Good morning, it's 9:23 on the clock on this Wednesday. Let's take a look sabse pehle at the waterfront in Dera. It is busy heading south going towards Abu Hail, and then you find a bit of congestion talking about Dera. ये होरलंस की तरफ जाता हुआ ट्रैफिक आपको मिलने वाला है, एंड यहाँ पर एक क्रैश इज बीइंग रिपोर्टेड एट अलमतीना स्ट्रीट D78 के मैं बात कर रहा हूँ। इन केस ऑफ मोर इन्फो अबाउट दैट गिव मी अ कॉल 800-1062। आल्सो एज यूजुअल हेडिंग टुवर्ड्स देरा क्लॉक टावर यू विल फाइंड ट्रैफिक D89 पर, एंड अ बिट ऑफ कंजेशन इज जस्ट बिल्डिंग अप अराउंड द क्रीक एरिया E11 पर। दिस इज हेडिंग साउथ ऑन शेख जायद रोड। चलते हैं 311 की ओर, यहाँ पर यू फाइंड कपल ऑफ पॉकेट्स ऑफ ट्रैफिक। एक तो अलवर का वन में हेडिंग साउथ, एंड देन ऑफ कोर्स एज यू गेट आउट ऑफ सिटी सेंटर ज़ाया हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड दुबई फ्रॉम शारजा। बिट ऑफ कंजेशन एट नादर हमार एज वेल एट D62 अगेन हेडिंग साउथ। इन केस यू स्पॉट समथिंग गिव मी अ कॉल 800-1062।
0: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
8: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: दे देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता. I'm a hustler, A1, lifestyle A1. आई मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ. हिटरो की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून, दोनों हाथों उठा के हवा में बेबी घूम.
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर.

0: Panadi, title track right here on Big 106.2. खुराफात की दुनिया, प्रैक्टिकल जोक्स की दुनिया के आप कितना भी अपने आप को खिलाड़ी क्यों ना समझते हो, there's always somebody who'll come along and make you feel like a total anadi.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: For example, this guy who got arrested recently. I

For example, this guy who got arrested recently. I'm not celebrating the fact that he got arrested. But क्यों arrest हुआ? मैं आपको बताता हूँ कि you've been to IKEA, right? IKEA में there are those directional arrows on the floor, ज़मीन पे वो अगर arrows ना लगी हों तो सोचो कि कितने ज़्यादा chances हैं कि आप खो जाएं. ऐसा ही कुछ हुआ. इसका proof मिल गया वहाँ पर because you know somebody, this guy, this practical joker, he went and changed and put up some fake directional arrows. इससे क्या हुआ, एक पूरा का पूरा भूल भुलैया बन गया इनसाइड आईकिया विद नो एक्चुअल एग्जिट एंड कस्टमर्स रिपोर्टेडली घंटों तक इन एरोज को फॉलो करते रहे कन्विंस्ड दैट दे आर ऑन द स्टोर्स नॉर्मल पाथ जबकि दे केप्ट लूपिंग बैक टू द स्टोर्स फर्नीचर सेक्शन. अरे यार यहाँ से तुम बस 10 मिनट पहले पास नहीं हुए थे. अरे नहीं नहीं यार, जस्ट इन योर माइंड यार, यही है सही रास्ता. बिकॉज अंधाधुन आप एरोज को फॉलो कर रहे हैं, यू ट्रस्टिंग दोज एरोज आउट देयर. लेकिन सिक्योरिटी सर्वेलेंस से पता चला व्हेन द फुटेज वाज पुल्ड दैट दिस गाय एक्चुअली प्लेस दीज फेक एरोज दैट मॉर्निंग बिफोर द ओपनिंग ऑफ द स्टोर. सो ही इज बीन टेकन इन टू कस्टडी एंड चार्ज्ड. बट हियर्स द थिंग, आई डोंट नो, आई मीन ही इज बीन अरेस्टेड आई एम हियरिंग, बट व्हाट आर द चार्जेस पता नहीं. पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल स्टोरी सुन के मजा आया ना. बस बंदे ने प्रूव कर दिया कि भाई खुराफा की दुनिया का ये है धुरंधर. स्पीकिंग ऑफ विच, हियर्स आरी आरी फ्रॉम धुरंधर द रिवेंज. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेठ. गुड मॉर्निंग.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: दिस समर दिस बिग कैश विंस विद बिग टिकट,
3: अ गारंटीड 15 मिलियन दिरहम ग्रैंड प्राइज अवे,
2: प्लस

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 10:10।
1: बॉलीवुड

0: सारी कविता सेठ की आवाज ऑन बिग 106.2। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सेठ। एंड कभी आपने सुना अबाउट दिस एंटायर फंडा ऑफ सर्वेलेंस प्राइसिंग? इट्स वेरी कॉमनली यूज बट क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग दैट कंपनीज लाइक एयरलाइंस यूज टू एडजस्ट दैट टिकटिंग फेयर्स।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: के मतलब बेस्ड ऑन लॉयल्टी प्रोग्राम डेटा या फिर रिटेल साइट्स की प्राइसेस एटसेट्रा, एंड एसेंशियली अगर आप कितने अगर ज़्यादा अर्जेंसी में अगर आप हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है कि ये एयरलाइंस कितने दाम चार्ज कर रहे हैं फॉर देयर टिकट्स, राइट? सो इट्स कॉल्ड सर्वेलेंस प्राइसेस। मतलब सर्वेलेंस के थ्रू बाय कीपिंग एन आई ऑन यू योर हैबिट्स दे एक्चुअली चेंज the price, make it more dynamic rather than a fixed one. Now this is all good when it comes to, you know, companies and the retail sector, but what if it actually translates on to the world of wages? Corporate mein bhi ab employers are starting to use something that is called surveillance wages. So it's like this very predatory thing that they are doing. And isme kya hai ki aapka jo data hai, पर्सनल हिस्ट्रीज, क्रेडिट स्कोर्स, ऑनलाइन बिहेवियर आपकी कैसी है, इसके ऊपर बेस करते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ सैलरी दैट अ एम्प्लॉय विल बी एक्चुअली रेडी टू टेक, राइट? मतलब एआई की मदद से वो देखते हैं कि एल्गोरिथम्स लगा करके क्या आपके स्पेंडिंग हैबिट्स हैं, कितना आपका खर्चा होता है, क्रेडिट स्कोर क्या है क्रेडिट कार्ड पर एट्सेट्रा, ये सब कुछ यूज करके क्या है वो मिनिमम सैलरी that the employee will not say no to. So rather than having like a, you know, standard thing ki agar aapne itni padhai ki hai aur itne is role pe agar aap ja rahe ho to ye aapka standard hona chahiye, ye logic is getting out of the window and there is something called surveillance wages that is coming in. It is highly controversial, by the way, and the whole point is, you guessed it right, ye jo data collect kar rahe hain, it is not asking for any sort of approval before they collect this data. So there you have it. Dur hat ja bhai, thoda sudhar ja. Say to all the employers जो कि ये कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। घाघरा from crew coming up in just a while, इला अरुण, this is the big breakfast with me, Sid.

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: ताकत का तरकब with Dabur Shilajit.
3: आज का पावर टिप. अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ही बनता है स्ट्रॉन्ग डे.
2: ताकत का तरकब with Dabur Shilajit. Consult your doctor before taking medicines and pharmaceutical products.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
6: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
7: बर्फ नहीं भाई, लेकिन बारिश जरूर गिरेगी सदर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द यूएई. दैट्स व्हाट द एनसीएमएस सेड. देयर इज अ वेदर वार्निंग. आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि स्टे अवे फ्रॉम फ्लैश फ्लड प्रोन एरियाज, वैलीज एंड रफ सीज एज वेल. 41 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 34%, हाइज ऑफ 42, लोज ऑफ 36.
6: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: your insurance gave you money back. Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. insurancemarket.ae.
1: और आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ताकत की कमी होना और कमजोरी फील करना इज वेरी वेरी कॉमन. स्ट्रेस, फास्ट फूड, फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल कैन मेक यू फील लो, बट यू डोंट हैव टू वरी. हैव डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स. ये हेल्प करते हैं इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड पावर. शेर की तरह बने मजबूत. हर दिन की शुरुआत करें विद डाबर शिलाजीत. मिटाए कमजोरी, बढ़ाए रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स दैट मेक यू फील स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट. आपकी जीत. डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल products.

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग मिक्स, वीकडेज 1 to 5 PM, ओनली ऑन बिग 106.2, ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae. Big 106.2. That's My Song by E. And.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: दो या चार?
3: चार।
4: कब तक वापस लड़ेगा?
3: यूं ही यही 4-5 दिन में।
4: चार या
3: पाँच?
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

96.2 The Beat of Bollywood. आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 1:05।
1: Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड आफ्टरनून, देयर इज अ बकायदा सेफ्टी अलर्ट दैट्स बीन इशूड इन द यूएई फॉर दिस आफ्टरनून। यू कैन एक्सपेक्ट हेवी रेन, थंडरस्टॉर्म, 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट, मेनली ओवर ईस्टर्न एंड सदर्न यूएई। यू कैन एक्सपेक्ट रेन ऑल द वे टिल फ्राइडे, ट्यूजडे टू फ्राइडे इज व्हाट द एनसीएम इज प्रिडिक्टिंग। एंड ऑलरेडी अबू धाबी, शारजा, फुजैरा, रसल खेमा में लॉट्स ऑफ थंडरस्टॉर्म्स यू कैन एक्सपेक्ट एज वेल। So temperatures hovering right now around 45 degrees, expected to go up to 50 this afternoon.
2: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 2:05।
1: Bollywood.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

Big 106.2 पर this is the big mix with me Sid and SRK was spotted arriving quietly at a London airport and now ये कितना contradiction है इसके अंदर यार. How can there be something quiet? How can you use quiet and SRK in the same sentence? नहीं हो सकता ना यार. You can't keep SRK away from the limelight for very very long. So fans, fellow travellers, उन्होंने spot कर लिया immigration area में कि अरे यार ये बंदा कहीं देखा देखा सा लग रहा है. तो शाहरुख खान है. एंड देन ऑफकोर्स इमिग्रेशन एरिया में केओस होते होते रह गया. मिनी फ्रेंजी वहां पर जरूर क्रिएट हुआ. एंड दिस साइटिंग इज बीइंग लिंक्ड टू द ऑनगोइंग बज अराउंड हिज फिल्म किंग जो कि दिसंबर में आने वाली है ऐसा सुन रहे हैं. सो फार द शेड्यूल इज दैट दिसंबर में रिलीज होगी. एंड रिसेंटली जो चैटर था ना कपल ऑफ डेज अगो, इफ यू रिमेंबर वी टॉकिंग अबाउट हिज न्यू लुक, ही हैड अ ब्लीच्ड हेयर स्टाइल एटसेट्रा, एंड देन पीपल वर लाइक इज शाहरुख खान गोना बी प्लेइंग अ ओल्डर जेंटलमैन इन दिस फिल्म, क्योंकि है तो एक्शन फिल्म, सो ओल्ड प्लस एक्शन. शाहरुख सीम्स टू बी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल दैट ही इज अटेम्प्टिंग. सो इतना बज ऊपर से शाहरुख खान को खुद देख लिया, इट डजंट नीड टू बी एनी बज एज वेल यार. हाउ वुड यू रिएक्ट if you just suddenly spotted Shahrukh Khan just away randomly? Huh? Have you ever done that? Abhi kabhi hua hai aapke saath aisa? Share that story with me. Give me a call 800-1062 ya phir WhatsApp 054-309-1062. This is The Big Mix with me, Sid. Good afternoon.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 3:06।
1: बॉलीवुड

0: Hollywood.
1: Look for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: Listen to her every day.
7: Mugembo, khush hua.
8: See, I binged watched Musafir Cafe. उसमें चंदर था, यहाँ चंद्रेश आ गए हैं. आपने देखा शो?
9: अभी शुरू किया है. I think completed 5 or 6 episodes.
8: हैं 8 सर. तो पूरा ही देख लेते हो. Why did you leave 2 episodes?
9: नहीं, time नहीं मिल पा रहा. We were traveling, just been back. So whatever little time we got, we started watching. But loved it so far.
8: We'll play the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. तीन चीजें बतानी है चंद्रेश 5 second के अंदर. 3 things that are yellow in color and you can eat.
9: टर्मरिक.
8: ओके, बट खत्म हो गया 5 सेकंड फटाफट खेलने की.
9: बोलो ना
8: गेम है. बोलो ना. अच्छा ये, ओहो, ये तो सुधा और चंद्र साथ खेल रहे हैं. ये सुधा है कि प्रीति है?
9: पूरा नहीं देखा. फॉर मी शी इज माई सुधा, शी इज माई प्रीति.
8: हाय, ग्रीन फ्लैग लाइक चंद्र. चलो दोनों साथ खेल लो. 3 बॉलीवुड मूवीज जिनके टाइटल में हम आता है.
9: हम आपके कौन, हम साथ साथ है, हम हिंदुस्तानी.
8: वेरी नाइस. 3 things that you pick from a hotel room.
9: Brush, towel, napkin.
8: Towels? ये तो बाली, आप इतने दिन लगा के आए हो तो मतलब साल भर के टॉवल इकट्ठे हो गए होंगे आपके.
0: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. This is The Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
12: एक तरफ तो समर की कड़ाके वाली गर्मी, ऊपर से लॉट्स ऑफ मॉइस्चर कमिंग इन फ्रॉम द गल्फ ऑफ ओमान, एंड दैट इज व्हाई द रिजल्ट इज दोनों जब कंबाइन होते हैं तो काफी थंडर स्टॉर्म्स होने के चांसेस हैं इन सर्टेन एरियाज ऑफ द यूएई, व्हिच इज व्हाई देयर इज एन अलर्ट, अ सेफ्टी अलर्ट दैट्स बीन इशूड अक्रॉस द यूएई. सो व्हेन यू आर ड्राइविंग बी केयरफुल. वैसे एनीवेज यू हैव टू बी केयरफुल, बट दिस इज दैट टाइम टिल फ्राइडे यू कैन एक्सपेक्ट सम अनस्टेबल वेदर. विजिबिलिटी माइट गेट अफेक्टेड सर्टेन एरियाज. ऑन एन एवरेज अक्रॉस द यूएई राइट नाउ 43 डिग्रीज सेल्सियस, एक्सपेक्टेड to go up to 47 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: It is not just Kajol's birthday. Today is the 5th of August. एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस का भी बर्थडे है, सो मजा आता है. थोड़ी थोड़ी चिंगारियां मैं आपकी तरफ, ट्रिविया क्वेश्चंस आपकी तरफ मैं फेंकता रहता हूँ. सो यू गॉट फिगर आउट हु दिस एक्ट्रेस इज हु शेयर्स हर बर्थडे विद काजोल. ऑलराइट, इनका जो नाम है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पेरेंट्स नेम. तो जिनेट एंड नील को ज्वाइन करके इनका नाम बनता है. एंड शी फर्स्ट गॉट नोटिस्ड नॉट इन अ फिल्म बट इन एन एड. पार्कर पेन, याद है आपको? पार्कर पेन का एक एड था विद अमिताभ बच्चन, विच शी गॉट नोटिस. एंड देन शी मेड अ फिल्म डेब्यू इन 2003. दिस फिल्म कॉल्ड तुझे मेरी कसम. ऑल्दो लोगों को लगता है कि ये वो फिल्म नहीं है जिससे कि उनका डेब्यू हुआ, शी डिड अ सुपर हिट फिल्म आफ्टर दैट. एंड उसका मैं सीन भी आपको सुनाने वाला हूँ. एंड आप बताना है कि किसकी बात कर रहा हूँ. हु शेयर्स हर बर्थडे विद काजोल. दिस इज द सीन फ्रॉम हर बिगेस्ट हिट.
2: देखो यार, ये लड़ाई झगड़ा मुझसे नहीं होता. डैड ने मॉम से एक ही प्रॉमिस लिया था कि मैं कभी किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा. तो तुम लोग डरपोक कह लो, फट्टू कह लो, जो कहना है कहो, मेक्स नो डिफरेंस.
3: होल्ड ऑन, होल्ड. अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करे, मेक्स नो डिफरेंस टू यू ना. अगर कोई मुझ पर हाथ उठाए तभी तुझे फर्क नहीं पड़ेगा. तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा, राइट?
2: राइट.
1: Lady's voice in this scene, you got to figure out ke kaun si wo actress hai unka bhi aaj birthday. If you got an answer for me, 0543091062 is the WhatsApp number. This is The Big Mix with me, Sid.

0: and Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: Taqat ka tarkaab with Dabur Shilajit.
3: Har din ko banaiye better with a strong routine. Healthy habits ke saath, डाबर शिलाजीत को अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए और रहिए एक्टिव.
2: ताकत का तड़का विद डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: बिग 106.2.

Big 106.2 पर दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिट ऑल द वे टिल 5 PM. एंड अगर आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्क्रोलिंग टू फाइंड द राइट रेंटल कार, यू डोंट हैव टू एनीमोर. ऑल थैंक्स टू सिया सेल्फ ड्राइव की AI कार रेंटल असिस्टेंट. जस्ट टाइप योर बजट, कार टाइप और एनी प्रेफरेंस दैट यू माइट हैव एंड सिया इंस्टेंटली रेकमेंड्स द राइट कार फॉर यू. नो एंडलेस स्क्रोलिंग, जस्ट अ क्विक एंड ईजी बुकिंग. विजिट selfdrive.ae टुडे.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4 बजे के बाद गुड आफ्टरनून कहते हुए इवनिंग जो भी है इट इज 4:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: Weather's going to be unstable till Friday. Driving might get a bit risky. So, बिल्कुल कोई risks ना ले and follow all the advisories issued by the authorities. Stay away from flash floods and valleys and समुद्र में तो आप बिल्कुल नहाने का सोचे भी नहीं. Right now it is on an average 43 degrees Celsius across the UAE. Expected to go up to 46 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big one.

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
1: दिस इज द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पर उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे है सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दिल को धड़क मगा, फरफराहट, थरथराहट, टपक पार, थरथराहट, थरथराहट, टपक पार, थरथराहट, टपक पार, छटपटाहट, फटाहट, सुबुगा, दुबुला, दुबुदाई, शिमलाई, बीग वाना।

ऑलराइट, आज के 8 घंटे के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। 8 घंटे कैसे आप पूछ रहे हैं? सुबह 7 से 11 एंड देन 1 टू 5 इन द आफ्टरनून एज वेल। डबल शिफ्ट चल रहा है आजकल मेरा। आई एम गोना बी लीविंग यू एंड यू कैन जॉइन मानसी नेक्स्ट अप अंटिल 9 PM। डोंट फॉरगेट फॉलो अस ऑन सोशल्स। वी आर 106.2 बिग FM, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल 106.2 बिग FM। वहां पर जाइए फॉर ऑल द बिहाइंड द सीन्स एक्शन, सम अमेजिंग पोल क्वेश्चंस फॉर यू टू टेक पार्ट इन एज वेल। आई एम सिट सेट SIDSETH। आई एम गोना सी यू टुमारो मॉर्निंग शार्प एट 7 ऑन अ वीकडे मॉर्निंग। दैट्स द शो, दैट्स द परफेक्ट वे टू स्टार्ट योर डे। द बिग ब्रेकफास्ट सुनना ना भूलें। टिल देन एंजॉय रेस्ट ऑफ योर वेडनेसडे। बाय बाय।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड इवनिंग, टाइम राइट नाउ 5:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Na de dil par desi nu tenne tadaro na

0: सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
1: The Big Thrill on Big 106.2. Brought to you by Dabur Shilajit. Aapki Jeet, Dabur Shilajit.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: इट्स 39 डिग्रीज, दो जाएगा अराउंड 35, किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा है जो वायरल हो रहे हैं हियर इन द यूएई कि इस बार इतनी गर्मी नहीं लग रही है, बाहर निकल के देखो बेटा दोपहर को 12 बजे और फिर लाइव शूट करना। गाड़ी में 47 डिग्रीज दिखा रहा था आज।
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: 5:15 हो गए हैं, शेख जायद में ट्रैफिक की शुरुआत हो चुकी है। ट्रैफिक में बैठे बैठे क्या करते हैं, माहौल बनाते हैं। अब ऐसा कोई बंदा मैं नहीं जानती जिसे अच्छे खाने और अच्छे गाने का शौक ना हो। अब अगर आप गाना गाना पसंद करते हैं, गाना आए या ना आए, डोंट वरी ऑडियंस, मैं आपको दूंगी तालियां तो मेरा ये बटन बजा देगा। सो अप्रिसिएशन 100% गारंटीड है। इफ यू एंजॉय सिंगिंग, यू लव कैरियोके, दिस इज इट, दिस इज व्हाट वी डू एवरी सिंगल इवनिंग। कोशिश इतनी करनी है कि दिल का दर्द बस कानों तक ना आए। वैसे आज का गाना इस काजोल स्पेशल बिकॉज इट इज अ बर्थडे एंड आई थिंक दिस शुड बी वेरी वेरी इजी।

अगर आपने गाना पहचान लिया है, द आइकॉनिक गाना पंजाब के सरसों के खेत, आपने भी 90s में किसी के लिए गुनगुनाया होगा, याद आ गया, तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल. वी आर कारियोकिंग हियर.

0: Bollywood.
1: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
4: Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
5: Kehte hai na, try and try till you succeed. Haar na maan mere sher. मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
6: बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
7: काफी स्लो मूविंग ट्रैफिक इफ यू फ्रॉम द शेख मोहम्मद बिन जायद वर्का मर्डिफ ऑल द वे टुवर्ड्स मुहिसना। फिलहाल 33 टू 40 मिनट डिले। देयर इज हेवी ट्रैफिक नियर थवाड बाय फेस्टिवल सिटी, काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल एट द मोमेंट। इफ यू आर अराउंड फहीदी देयर इज हेवी ट्रैफिक ऑन द रेगा रोड शेख जायद पे एट द मोमेंट, 20 मिनट डिले। बट ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। हेस स्ट्रीट पे पैची ट्रैफिक, जेवीटी जेवीसी ऑल द वे अंटिल मोटर सिटी। एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062।
6: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big.
8: Fire hai tu.
9: Wild fire hai.
10: Mera naam hai Pushpa. Pushpa Raj. Apne dam pe banaye main. Naam kaafi hai, pehchan ki zarurat nahi hai.

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, I'm Mansi. We are karaoke-ing here. This is what we do, 5 se 6, while you're stuck in peak traffic. Hum mahol banate hain. Mahol aapko aur mera banna chahiye. Bas itni koshish karna ke log tune off na karein, kyunki ye meri rozi roti hai. Filhal, aaj Kajol special hai. And joining us today is, I forgot to ask your name, baaton mein.
2: Imran.
1: Imran jo hai, wo keh rahe hain, main bahut thak gaya hoon, garmi bahut hai, duty kar raha tha. Kya duty karte hain aap?
2: Site supervisor हूँ,
1: advertising company में.
2: Yes.
1: तो मुझे लगा कि साइट पे रहते हो सारा दिन गर्मी में.
2: नहीं, साइट तो होती है ना, साइट कंस्ट्रक्शन साइट होती है ना, वहाँ पे एडवर्टाइजिंग का काम है ना.
1: अच्छा, तो मतलब आप पीक गर्मी में रहते हो बाहर.
2: हाँ जी, जी 47 पे था.
1: हाँ, 47 पे था. तो ऐसे गर्मी में आप अपने आप को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं इमरान?
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेमन रखा हुआ है वाटर. और
1: गुस्सा आता नहीं आता गर्मी में?
2: गुस्सा तो ज्यादा आता है.
1: हाँ, गर्मी में सबका दिमाग भी गर्म हो जाता है, इसलिए मैं कहती हूँ ठंडा रखो खुद को. हाँ, बहुत जरूरी है फिलहाल.
2: बिल्कुल जरूरी है.
1: काजोल अच्छी लगती है इमरान?
2: हाँ जी, क्यों नहीं.
1: आए, सो क्यूट. तो गाना तो आपने पहचान लिए, गाते वाते हो, साइड पे खड़े खड़े गुनगुनाते हो.
2: हाँ जी हाँ जी.
1: चलो, अब आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर दिए. गर्मी बहुत है, लोगों को गुस्सा मत दिलाना, बस उन्हें मजा आना चाहिए. ठीक है, इमरान साहब आपका ट्रैक. हाँ जी,

0: बस
1: सारी थकान उतर गई। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया आपने।
0: थैंक यू।
1: तो ये किसके साथ गए थे DDLJ देखने?
0: नहीं नहीं नहीं, बस किसी के साथ नहीं, घर में ही अपनी फैमिली के साथ।
1: ये तो झूठ बोला है आपने, जिस हिसाब से आपने।
0: नहीं नहीं, तब तो हम छोटे
1: पॉज देके बोला है ना,
0: छोटे छोटे थे। स्कूल टाइम था जब ये आई थी काजल, फिर अजय देवगन ले गया।
1: है कि जब मोहब्बत होती है उसके साथ जाके देखाओ, दिखा दो उसे। दिखाई तो होगी किसी को?
0: हाँ जी, वो जबरदस्त टाइम था 1995-96-2000 तक। बाकी तो आज का क्या प्यार है, बस ऐसे ही।
1: कौन सी वो पहली लड़की थी जिसको देख के गाना दिल से आया था, तुझे देखा तो ये जाना समझा?
0: हाँ जी।
1: कौन थी? हाँ जी हाँ जी,
0: वो मामू की बेटी थी।
1: तो फिर मामू की बेटी कहाँ गई? अब
0: शादी होगी, उसके 4 बच्चे।
1: अच्छा, आज जितने आते हैं ना यहाँ पे, सबकी जो है पहली जो मोहब्बत होती है वो कहीं और ही होती है।
0: बट इमरान,
1: मजा बड़ा आया आपसे बात करके, गाना भी आपने बहुत मजेदार गाया। हैव अ ग्रेट इवनिंग।
0: हाँ, मैं ऐसे गाता रहूंगा, मैं सुनता हूँ, आपको कभी मिस हो जाता। अभी मैं साइड से निकला था आपका, 5 o'clock मैं वेट कर रहा था।
1: हाई सो क्यूट, चलो कोई तो है इंतजार कर रहा है हमारा भी। आप घर पहुंचो, हैव अ ग्रेट ड्राइव। थैंक यू
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
1: यही होता है एवरी सिंगल इवनिंग, हम गाने गाते हैं। अगर आप भी गानों का शौक रखते हैं, गुनगुनाते हैं, देन इट इज कैरियोकी टाइम 800-1062 पर।
2: कैरियोकी बीट 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: आप अकेले हो ना मैं अकेली हूँ, हम दोनों साथ साथ हैं। आप ट्रैफिक में फंसे हो, मैं आपकी कंपनी हूँ और यहाँ पे हम गुनगुना रहे हैं विद द कैरियोकी। इफ यू एंजॉय सिंगिंग देन गाड़ी में बैठे बैठे अपना कॉन्सर्ट होस्ट कीजिए। आई एम गिविंग यू द स्टेज 800-1062 पर। फिलहाल कमिंग अप वो गाना जिसने बच्चों की जिंदगी से कोको मेलन को हटा दिया है।
1: आज की रात मजा
0: मधुबंती बागची साथ में दिव्य कुमार फ्रॉम स्त्री टू। इसी के साथ आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीमेक। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुली रीमेड गाना तनिष्क बागची ने रिक्रिएट किया है। दो दिन दूर है वीकेंड, बट माहौल अभी से बनाना जरूरी है। इफ यू नो यू नो। फिलहाल कमिंग अप राइट हियर ऑन द बिग थ्रिल, मैं हूं मानसी।

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: ताकत का तरकाब विद डाबर शिलाजीत।
3: दिन भर एक्टिव और फोकस रहना है तो डाबर शिलाजीत लीजिए, स्ट्रेच कीजिए और अपनी एनर्जी को रिचार्ज कीजिए। छोटी आदतें बड़ा इम्पैक्ट।
2: ताकत का तरकाब विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
4: डिड यू हियर दैट? दैट्स द साउंड ऑफ समथिंग बिग लैंडिंग एट पापा जॉन्स। New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
3: All right, slow moving traffic at the moment. अगर आप हेसर स्ट्रीट लेकर JVT, स्पोर्ट सिटी ऑल द वे मोटर सिटी तक काफी स्लो मूविंग ट्रैफिक है. दिस ट्रैफिक नियर फरजान. Also, Marina to JBR, 18 to 20 minute delay. Heavy traffic at the moment, Alkuz Industrial Area ke pass. Plus, Sheikh Zayed pe filhal dikha raha hai 22 minute ka delay. But, ye to bas shuruaat hai. Festival City, Umranmool, all packed. Murif to Mohisna again, a 33 minute delay. Anything else you'd like to report, mujhe bata sakte hain 800-1062 par.
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
5: मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको.
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: वेंसडे इवनिंग वी आर कारियोकिंग, लोग कार पुल करते हैं, हम कारियोकी करते हैं, ट्रैफिक में बैठे बैठे क्या करें, गाना गाते हैं, माहौल बनाते हैं, रिलैक्स करते हैं. नाउ जॉइनिंग अस इज कोमल. यू नो व्हाट, यू शेयर योर नेम विद माय बॉस.
2: यस, यू जस्ट मेंशन टू मी, आई डिडंट नो दैट.
1: या आप हैं कोमल.
2: कोमल नाम है यार. कोमल नाम तो कॉमन ही है, कोमल जैसा है वैसे.
1: या एनी, बट इन रियल लाइफ आर यू अ कोमल पर्सन?
2: आई एम एक्चुअली सेंसिटिव.
1: अच्छा, आर बॉस इज कंप्लीटली ऑपोजिट.
2: माय गॉड, आई होप आप सुन रहे हैं.
1: फिलहाल करते क्या आप कोमल?
2: मैं काम करती हूँ बैंक में, एंड देन आई डू फोटोग्राफी आल्सो.
1: वेरी नाइस, बैंकर प्लस फोटोग्राफर, वेरी नाइस. सो टेकिंग पिक्चर्स इज योर हॉबी एंड बैंकिंग इज योर प्रोफेशन. कभी सोचा नहीं कि फुल टाइम फोटोग्राफी करूं?
2: सोचा है, देख सोच रहे हैं अभी भी.
1: फुल टाइम ये मिलेनियल्स ना, हम बस सैलरी से सैलरी बंधे रहते हैं. जब तक पैशन फॉलो करने की बात आती तब तक हमारा हो जाता है. बट आई एम आई थिंक वन ऑफ द फ्यू जो ब्लेस्ड हैं दैट आई गेट टू डू व्हाट आई लव. सो आई रियली होप दैट वन डे यू डिसाइड कि इट्स इनफ ऑफ अकाउंट्स.
2: जस्ट वन थिंग टू ऐड मंथली, सिंस यू मेंशनड, That was my dream actually to become an RJ. Let me be honest with you on that.
1: बड़े सारे आप में टैलेंट है, आप बैंकिंग कर रहे हो, फिर फोटोग्राफी भी करनी है, आरजे भी बनना है.
2: ड्रीम मेरी आरजे बनना था, तो yes, where you are, that's the same dream I had.
1: था क्यों बोल रहे हो? ड्रीम्स तो कभी भी पूरे हो जाते हैं, बस देखते रहा करो. वाह, कितनी अच्छी बात बोल दी मैंने. अब इसी बात पे अब आपने कह दिया है कि यू नो आप रेडियो में आना चाहते थे, तो आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है. बट अब हम आपका गाना सुनेंगे. द सॉन्ग यू ऑलरेडी नो इज अ वेरी पॉपुलर काजोल का गाना. सो डू यू सिंग?
2: यस आई डू, यस आई डू.
1: या, योर वेरी नाइस वॉइस. आई हैव रियली हाई होप्स.
0: कारियोकी.
1: चलो जी, आपका ट्रैक. हां जी.
2: तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए.
1: वाह, तो ये सिंगिंग भी डाल लो अपने एक हॉबी में. नॉट बैड एट ऑल.
2: There's one more song which I have sung and it's not Kajol's song, but that's a rap actually. So
1: rap भी कर यार, एक ही बंदे में इतना टैलेंट कैसे? कहाँ समाते हो इतना टैलेंट? आपके बैंक को आपको लॉकर में रखना चाहिए. आप हो एसेट, आप हो खजाना. फिलहाल कोमल, मजा बड़ा आया आपसे बात करके. गाना भी आपने बहुत अच्छा गाया. होप यू हैड फन.
2: यस, थैंक यू वेरी मच.
1: हैव अ ग्रेट इवनिंग. थैंक यू.
2: बाय.
1: अगर आप भी कारियोकी करते हैं, यू कैन ऑल्सो रजिस्टर. जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप कारियोकी अपना नाम 2054309106.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. This is the Big Thrill of Mansi. And of course, one thing that is trending, of course, Ravi Kishan to trend kari rahe hain social media pe, but Bhoomi Pednekar. She went live and she was saying ki jaise ye Gen Z's language use karte hain, inki bhasha achhi nahi hai, they are very disrespectful. भूमि की ही स्कूल की टीचर ने उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया है एंड वो वीडियो वायरल हो गया कि भूमि बहुत अच्छा लगा तुम्हें ये ज्ञान देते हुए बट एज अ किड आई रिमेंबर यू वर इक्वली डिसरिस्पेक्टफुल एंड यू यूज्ड वेरी वेरी बैड लैंग्वेज सो वी डिस्कसिंग दैट इन जस्ट अ बिट वी आर ऑल्सो प्लेइंग दिस फन गेम इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल आपको मिलते हैं 5 सेकंड मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज तीन चीजें आपने बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर हाँ मुझे पता है इट साउंड्स वेरी वेरी ईजी बट वेट अंटिल यू प्ले दिस गेम अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं 5 सेकंड के अंदर 800-1062 इज द नंबर टू डायल

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 6:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: All right, we're playing the 5-second rule. Phone lines per Fahim. Hi, good evening.
3: Very good evening. How are you, Mansi?
2: I am good, Fahim. How are you?
3: Good, thank you.
2: इतनी जल्दी में क्यों?
3: मैं जल्दी में नहीं हूँ, ट्रैफिक ज्यादा है।
2: कहाँ फंसे हो? शेख मोहम्मद बिन जायद?
3: बस वहाँ से निकल के अभी शारजा की तरफ पहुँचने वाली है।
2: ओए होए होए, मतलब तालियां बजनी चाहिए उनके लिए जो रोज दुबई से शारजा जाते हैं।
3: बहुत ज्यादा
2: तालियां, मतलब दैट इज आई थिंक नेक्स्ट लेवल ऑफ पेशेंस दैट यू गाइस हैव अचीव्ड। अब तो आपको कोई कुछ भी बोले आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि रोज आप ये ट्रैफिक से गुजर के अपने घर पहुंचते हैं। बट फहीम, विल प्ले द 5-second रूल। करते क्या हो आप?
3: मैं अकाउंटेंट हूँ।
2: अरे वेरी नाइस, अकाउंटेंट।
3: मुझे उससे पहले छोटी सी बात करनी है। लास्ट टाइम मैं आपके इवेंट में आया था एंड आई मेट यू देयर, एक्चुअली आपने मुझे गिफ्ट भी दिया था। आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग इन द ऑन एयर दैट जैसा मैंने आपको रेडियो में सुना, द सेम आई फाउंड योर पर्सनैलिटी इन फ्रंट आल्सो। यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी हम्बल इन फ्रंट आल्सो। लाइक बैक आप जहाँ जब थोड़ा से बात किया अभी बड़ा अच्छा लगा, मिलकर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपसे।
2: हाय स्वीट फहीम, मुझे ना बड़ी अच्छी लगती है अपनी तारीफ, क्योंकि मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं जो मेरी तारीफ करे, मैं खुद की करती रहती हूँ। बट थैंक यू सो मच, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। बट वी विल प्ले द 5-second रूल एंड आई होप यू हैव फन प्लेइंग दिस एंड यू प्ले वेल, ओके? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि आप जवाब दे पाओगे, बट खेलते हैं।
1: 5-second रूल।
4: ओह यस।
2: तीन चीजें जो दूध से बनती हैं।
3: पनीर।
2: पनीर के बाद टाइम खत्म हो गया फहीम साहब, फटाफट खेलना है। 3 सलमान खान की मूवीज।
3: मैंने प्यार क्यों किया।
2: अच्छा,
3: माय नेम।
2: टाइम खत्म हो गया, मैंने सही पकड़ा था, ये नहीं दे पाएंगे जवाब टाइम पे। अच्छा, 3 ऐसी चीजें फहीम जो शादी के बाद बदल गई हैं। मुझे पता है हर शादीशुदा बंदा इस सवाल पे अटकता है। अच्छा, 3 ऐसी चीजें जो आपको अपनी बीवी के बारे में बदलनी है, जो अच्छी नहीं लगती, चेंज करना चाहते हो।
3: बहुत है।
2: इधर ही रहती है कि दूसरी कंट्री में रहती है?
3: साथ में ही है।
2: आपने उनके सामने बोला बहुत पकाती है, बहुत बातें सुनाती है, और वो चुपचाप बैठी है?
3: नहीं, साथ में नहीं है, मैं तो अकेला बैठा हूँ। चार्जर से काम थोड़ा साथ में लेके आऊंगा, उसको मरना है क्या मैंने?
2: अगर किसी ने बता दिया कि फहीम ने ये बोला है तो आज रात को सोच लेना क्या आने वाला आपके साथ।
1: 5-second rule
2: है, सोफे वोफे पे सोना पड़ेगा। कितनी बार हफ्ते में सोफे में सोना पड़ता है?
3: तकरीबन 1 से 2 बार।
2: हाय, आपकी अच्छी नहीं लग रही है मुझे हरकतें जो आपको हफ्ते में 1 से 2 बार सोफे पे सोना पड़ता है। बट फहीम, एक बात बोलूं, आपने ये गेम इतना खराब खेला है कि आज के दिन में सबसे खराब आपने ही खेला है। बट ये जो आखिरी जवाब आपने दिया ना, आई थिंक जितने भी पति सुन रहे हैं इस वक्त गाड़ी में, वो बोलेंगे हाँ फहीम, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है।
3: दुनिया में
2: बात बताओ फहीम, कितने साल हो गए आपकी शादी को?
3: मेरी शादी को कम हो गए, 2 साल।
2: 2 साल में ये हाल है, 12 साल बाद पता नहीं क्या होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।
3: अच्छा है, पता है अच्छा है, क्योंकि मुझे आदत हो गई है इस चीज की, के अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने।
2: ये बीवियां बैन कर देंगी हस्बैंड्स को मेरा शो सुनने से। ये इसने अलग किटी पार्टी बना रखी है पतियों की, कि ये बीवियों की बुराई करते हैं कॉल करके। फहीम, यू आर सच अ फन गाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। बाय फहीम, ड्राइव सेफ, बाय। यही है 5-second रूल, आपने खेलना एक ही रूल है, मुझे कॉल कीजिए 800-1062 पर।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, ये है बिग थ्रिल. मैं हूँ मानसी. वी प्लेइंग द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. आपको 5 सेकंड मिलते हैं. मैं कुछ कैटेगरीज देती हूँ, 3 चीजें बतानी होती है. आ गए हैं मृदुल.
2: Hey, hi.
1: तो मृदुल, क्या चल रहा है जिंदगी में? क्या प्लान है?
2: Well, I'm getting married next month.
1: Oh, very nice. Arrange love.
2: Yeah, I mean, family decided here, then we met and then it happened.
1: तो आपका love marriage से विश्वास क्यों उड़ गया? मतलब क्यों आपने arrange marriage का रुख किया?
2: No, it is arranged come love, you can say.
1: मतलब बहुत धोखा खाया मृदुल ने. फिलहाल we'll play the 5 second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. 3 चीजें बतानी है फटाफट 5 second के अंदर. All the best.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: Quickly tell me 3 चीजें जो मटर के साथ बनती हैं.
2: समोसा.
1: वाओ, एक बताया वो भी समोसा. मटर पनीर साथ में, आलू मटर, गोभी मटर. आजकल तो हर चीज में मटर डल रहा है. मूविंग ऑन क्विकली, टेल मी 3 सनी देओल की मूवीज.
2: घातक.
1: ओह नाइस. अरे रे रे, घातक जिद्दी में अटक गए. 3 things दैट यू रियली वांट कि आपकी जो वाइफ है उनमें वो क्वालिटीज हो शादी के बाद.
2: Caring, enjoyable.
1: Enjoyable? Time खत्म हो गया. What do you mean by enjoyable?
2: हैं? Enjoyable as in enjoyable, yeah. Many people are not enjoyable.
1: What do you mean people are not enjoyable? I am Ridul, yaar. Oh, 3 red flags जो शादी के बाद आप उम्मीद करते हैं कि आपके पार्टनर में ना हो.
2: Trust issues नहीं होना.
1: हाँ, ट्रस्ट इश्यूज नहीं होना चाहिए. आप अगर enjoyable करोगे तो उसको 100% ट्रस्ट इश्यूज होंगे.
0: 5 second rule.
3: Oh yeah.
1: मृदुल, आपको मैं बताऊं आपने कैसा खेला है कि रहने दूं?
2: नहीं, आप बता दीजिए.
1: नहीं, नहीं, बहुत ही खराब खेला आपने. बट ऑल द वेरी बेस्ट, यू गेटिंग मैरिड, वी आर एक्साइटेड. तो कहाँ है शादी? यहाँ है कि इंडिया में?
2: शादी इज इन जयपुर.
1: छुट्टी मिल गई ऑफिस से?
2: छुट्टी तो मिली है बट कम मिली है यार.
1: कितनी छुट्टी मिली है? 10 दिन?
2: 2 weeks.
1: Oh-ho, which includes your honeymoon?
2: Which doesn't include actually.
1: अच्छा, तो हनीमून के एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, तो अच्छा ऑफिस है. फिर तो सेट है. हनीमून पे कहाँ जा रहे हो आप?
2: अभी तो डिसाइड नहीं किया, लेट्स सी.
1: शादी कब है? अगले महीने ना?
2: अगले महीने.
1: तो अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है?
2: नहीं, बिकॉज़ लीव्स हनीमून के लिए नहीं किए.
1: ये आपने अपनी होने वाले वाइफ को बताया है?
2: हाँ, बताया.
1: अच्छा, तो वो बात कर रही है आपसे कि नहीं कर रही है? चलो, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू मृदुल. ऑल द वेरी बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस अगेन.
2: थैंक यू.
1: बाय. ये 5 सेकंड रूल अगर आपने खेलना है, एक ही रूल है, मुझे कॉल करना है 800-1062 पर.
0: बिग 106.2.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
2: हाँ जी, खेल रहे हैं 5 सेकंड रूल। आ गए हैं हिदायत, जो आज बहुत गुस्से में है। क्यों? Is it the weather or something at work?
3: Both.
2: ओहो, इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता है। वैसे जिन्हें नहीं पता है, हिदायत का मतलब होता है एडवाइस। तो आप लोगों की हिदायत मानते हैं? हिदायत
3: लोगों को हिदायत देते हैं।
2: लोगों को हिदायत देते हैं। देखो, एडवाइस एक ऐसी चीज है, जितनी भी अच्छी हो, लोग फ्री की चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बताओ मुझे, ऑफिस में किसने आपको नाराज किया है? बॉस ने, कॉलीग ने?
3: सब ने।
2: एक ही दिन में सब ने?
3: सब ने।
2: अरे रे रे रे, कोई बात नहीं, तब घर जाके गुस्सा मत निकालना। फिलहाल विल प्ले द 5 सेकंड रूल। इट्स अ फन गेम, यू गेट 5 सेकंड्स। आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज, तीन चीजें बताना 5 सेकंड के अंदर। ऑल द बेस्ट।
1: 5 सेकंड रूल।
4: ओह या।
2: इस वक्त अगर तीन चीजें आप अपने बॉस को बोल सकते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? हिदायत,
3: एक ही चीज।
2: Three things that you love doing on weekends.
3: Weekend movie, friends, and having dinner with
2: them. Having dinner. So you don't have dinner during weekdays. You wait for
3: dinner
2: weekends.
3: With friends, I could.
2: Acha, with friends.
3: Yeah.
2: आज काजोल का बर्थडे है, तो तीन काजोल की मूवीज।
3: कुछ कुछ होता है।
2: And. DDLJ, दिलवाले, दुश्मन, बहुत सारी है, बहुत सारी, कभी खुशी कभी गम। थ्री थिंग्स दैट आर ग्रीन इन कलर एंड यू कैन ईट।
3: ग्रीन एप्पल
2: एंड
3: कॉलीफ्लावर।
2: टाइम इज खलास, 5 सेकंड फटाफट। इफ फॉर अ डे यू बिकम द बॉस, सो थ्री चेंजेस यू विल ब्रिंग टू योर वर्क प्लेस।
3: I will terminate all the employees and I will give the new opening and I will be the one.
2: Oh God! One day he'll become the boss. He'll terminate all the employees. This is the best answer ever. मतलब बहुत ही खराब दिन गया है in office, है ना?
3: So.
2: What do you mean? Welfare officer का welfare मुझे खतरे में दिख रहा है.
3: Oh, yeah. I had called you last back also, maybe like two or three months back. I had called you once.
2: That time you were not this angry. I guess today something major has happened. Welfare officer ke saath kuch gadbad chal rahi hai. Filhal office ka tension office mein rakho aur office ke logon ko do, ghar ja ke aaram karo. Game aapne bahut kharab khela, but I hope you had fun.
3: Okay.
2: Bye, Dayat. Bye.
3: Bye, bye, bye.
2: Yeah, 5 second rule. आपने खेलना है तो एक ही रूल है, कॉल करना है मुझे 800-1062 पर।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:09।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Early in the morning, the big breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color.
3: Namaste.
4: Hola.
3: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
1: The Big Thrill on Big 106.2 brought to you by Dabur Shilajit. Aapki jeet, Dabur Shilajit.
8: Don't miss your chance to get a big cash win with Big Ticket.
9: A guaranteed 15 million dirham grand prize.
8: Plus 5 consolation prizes of 100,000 dirhams each.
9: And with Big Spin, the chance to win up to 1 million dirham.
8: Don't forget the 4 weekly cash e-draws of 25,000 dirhams.
9: Buy now at bigticket.ae.
10: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
13: 38 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 35, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 54% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2

0: you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: तबाही मचाई हुई इस गाने ने सोशल मीडिया में. कियारा अडवाणी, यश, रॉक स्टार यश, क्योंकि एक दो बारी मैंने सिर्फ यश बोल दिया. आई डिडंट रियलाइज के इनका पूरा नाम रॉक स्टार यश है. I haven't seen KGF 1 or 2, so honestly, I didn't know of him until I saw this song and I started googling him. फिर मुझे पता चला कि इतना good looking लड़का पहले मैंने क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैंने KGF जो है वो miss कर दी है. फिलहाल this is one of the most anticipated movies of 2026 and push होकर अब ये 26th August को release होगी. One of the most expensive movies as well. And talking about some great movies, Oh My Dog जो है वो मूवी भी जो है रिलीज हो चुकी है. गुड रिव्यूज कमिंग इन. वी गॉट पंकज त्रिपाठी इन द मूवी फ्रॉम द मेकर्स ऑफ ओ माई गॉड. एंड इस वीक जो है वो इस थिएटर्स में आप देख सकते हैं ओ माई डॉग को. एंड क्रिटिक्स एंड इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने ऑलरेडी ये मूवी देख ली है, कमाल रिव्यूज आ रहे हैं. मैं ये मूवी नहीं देख पाऊंगी बिकॉज I can't see anything wrong happening to a dog. I can watch a crime thriller जहाँ पे किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, but anything, एक खरोच to the dog and I will be hurt. For all, talking about movies, आज काजोल का birthday है. I'm sure it's very, very easy. We all remember her from DDLJ, Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhi Gham, Fana. But let me see how many of you remember her from this movie. मैं एक dialogue आपको सुनाने वाली हूँ. You have to guess कि काजोल की किस movie से ये dialogue था.
3: ओह ईशा, तुमने तो मेरे जाने निकाल दी. साहिल से बात कर रही थी. हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे?
4: मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ शीतल. मैंने तुम्हें आज सुबह बहुत भला बुरा कहा, तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की. पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मुझे माफ कर देना.
3: इसमें माफी मांगने की क्या बात है? तुम पे जो बीती वो अगर मुझ पे बीतती तो शायद मैं भी वैसे ही करती.
4: नहीं शीतल, तुम ऐसा नहीं करती. मैं एक अलग किस्म की लड़की हूं. कहो ना, तुमने मुझे माफ किया?
3: अच्छा बाबा, माफ किया बस. जरा रुकना, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ.
4: परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है.
2: अगर आपने गेस कर लिया है ये काजोल की कौन सी मूवी थी, देन 800-1062 इज द नंबर टू डायल. लाइक आई सेड, इट्स वेरी इजी. कुछ कुछ होता है, DDLJ, द गर्ल नेक्स्ट डोर, द हैप्पी बबली काजोल, बट दिस वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट मूवी. याद आ गया है, ऑलरेडी आ गया है बहुत सारे लोगों को याद. 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

0: सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
4: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग, विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
6: InsuranceMarket.ae. Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, InsuranceMarket.ae.
7: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
2: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Not really big, but 10 to 12 minute delay. अगर आप ऐसे street पे हैं towards JVC, there's still patchy traffic. A 22 minute delay Merv to Mohisna. 25 से 30 minute का delay Sheikh Zayed पर अभी भी heavy traffic though near Riga. Anything else you'd like to report? मुझे बताइए 800-1062 पर.
7: Sia, Self Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

देखो मौका मिलता है ना, टीचर्स जो है वो टीचर्स बन जाती हैं। भूमि पेडनेकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शी इज टॉकिंग अबाउट कि यू नो जेंजीज को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, दे आर लिटिल बदतमीज, डिसरिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं, ये वो ये। वीडियो के नीचे भूमि की ही स्कूल टीचर ने कमेंट कर दिया है कि डियर भूमि, एज फार एज आई रिमेंबर स्कूल में यू आर ऑल्सो वेरी रूड, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, तुम अपनी टीचर्स से जो है बदतमीजियां किया करती थी, व्हाई दिस सडन चेंज भूमि? मैंने कहा ना, आप कितने भी बदल जाओ, आपकी टीचर्स आपके स्कूल का वो अवतार याद रखेंगी। तो आपकी कोई ऐसी टीचर है कि सालों बाद भी वो आपको वही बदमाश बच्चा समझती है क्लास का, वो कौन सी टीचर हो सकती है? अगर आप ऐसा कोई वीडियो डालो तो वो ऐसा कमेंट नीचे करे जैसे भूमि पेडनेकर की टीचर ने किया है। फिलहाल कमिंग अप, राइट ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। 106.2

0: Bollywood. The Big Jill.
1: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
5: ए जल्दी हटा तेरा खटारा चल हटा अरे जल्दी हटा
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: हाँ जी आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलने वाला है इस वक्त अगर आप शेख मोहम्मद बिन जायद पे नॉट रियली बैड बट स्टिल 20 मिनट डिले देयर स्टिल पैची ट्रैफिक अराउंड 24 टू 26 मिनट डिले ऑन शेख जायद इसके अलावा हल्का फुल्का ट्रैफिक ऑन द हेसे स्ट्रीट नथिंग टू वरी लाइक 8 से 10 मिनट का डिले है आई डोंट सी एनीथिंग एल्स अगर आपने कुछ रिपोर्ट करना है बताइए 800-1062 पर
0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
7: आपसे पूछना था आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है
8: नहीं ये तो मुफ्त है
7: गुड चलो फोन लगाओ
0: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, ye hai Big Thrill Mansi and Flal, my spirit animal, Rakhi Sawant nahi, Rakhi ji aa chuki hai. Hi Rakhi, tell me you also love Rakhi Sawant.
2: No, I don't.
1: Oh my God. So, Rakhi, how was your day?
2: Oh, it was good. Just landed last night from my holiday.
1: Taj office mein dil laga because it's very hard after a vacation.
2: No, I'm a housewife actually.
1: But still, it's hard, na? Coming back and ghar ka pura kaam and all. It is hard.
2: Yes.
1: Okay, Rakhi, I'm going to take you back to your school days. So, Bhumi Pednekar, na, she put up a video saying ye Gen Zs are so badtameez, disrespectful way mein baat karte hain. They don't know how to use the right language. And usi video ke niche, Bhumi's school teacher commented. कि भूमि, as far as I remember, you were equally बदतमीज and you were very rude and बहुत disrespectful थी तुम towards your teachers. So how this sudden change? So do you remember that one teacher कि आप कितने भी अच्छे हो जाओ, कितने सालों बाद she'll remember you from school only, कि ऐसी थी तो ऐसी रहेगी.
2: Actually मैं तो नहीं थी ऐसी, मैं तो बहुत ही शांत quiet लड़की थी in school days.
1: हम सबको लगता है, तो मुझे भी लगता है, बट एक आधा टीचर निकल आएगी ऐसे वीडियो के नीचे. As far as I remember, you were not this girl.
2: नहीं, as far as I know myself, मुझे मालूम है, I was very quiet and ज्यादा बात नहीं करना स्कूल में.
1: You were टीचर की फेवरेट.
2: Yeah, you can say that.
1: So no teacher disliked you?
2: No.
1: ये देखो, ये तो बहुत ही गुड स्टूडेंट आ गया. तो शी कैन डेफिनेटली पुट अप वीडियो सेइंग कि जेन ज़ीज़ आर अ लिटिल डिसरेस्पेक्टफुल, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक एंड ऑल.
2: आई कैन,
1: वेरी नाइस,
2: बट आई नो आई कांट डू दैट.
1: व्हाई?
2: बिकॉज़ मेरे खुद के 3 बच्चे हैं.
1: वो ही आके नीचे कमेंट कर देंगे कि हम नानी से पूछ के बताते हैं, चलो टीचर के सामने तो हम एक्टिंग कर लेते हैं, घर में थोड़ी ना एक्टिंग होती है.
2: करेक्ट करेक्ट. हाँ, वही
1: तो नानी पोल खोल देगी, टीचर की भी जरूरत नहीं है. चलो जी, थैंक यू सो मच राखी, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड अ ग्रेट ड्राइव बैक होम.
2: ऑलराइट, थैंक यू,
1: बाय बाय
2: बाय.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: You know, आज के ज़माने में मॉडर्न लाइफस्टाइल में लैक ऑफ स्ट्रेंथ वीक फील करना इज़ वेरी वेरी कॉमन. इतना स्ट्रेस है, फास्ट फूड है, बड़ी फास्ट पेस लाइफस्टाइल है, हम सब भाग रहे हैं. एंड ऑल ऑफ दिस कैन मेक अस ऑल फील वेरी वेरी लो, बट यू डोंट हैव टू वरी. आई हैव गॉट द सॉल्यूशन. जस्ट हैव डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स. दे हेल्प इंक्रीज योर मसल स्ट्रेंथ, योर स्टेमिना एंड योर पावर. अगर आप शेर की तरह मजबूत बनना चाहते हैं, देन दिन की शुरुआत कीजिए विद डाबर शिलाजीत. ये है 100% नेचुरल आयुर्वेद supplements that will make you feel stronger and more confident. Aapki jeet, Dabur Shilajit. Definitely consult your doctor before taking any medicines or pharmaceutical products.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। बिग
1: हेलो,
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना। हेलो, सुन रहे हो ना?
3: हे

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कुछ समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 101.2. The beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
3: 38 degrees है. रात तक 35 चला जाएगा. फिलहाल काफी ह्यूमिडिटी 54% पर.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, I'm Mansi. This is The Big Thrill and we've got Nitin. Hi, Nitin.
3: Hi.
4: Hi. Bada lamba din tha aapka?
3: Bada lamba din tha.
4: Yaar, mera bhi aaj.
2: Pata hai, aap pata chalne laga, you know, once you hit that 30s, uske baad you understand your body telling you it's been a long day. Pehle nahi samajh aata tha, hai na?
3: Correct.
4: तो क्या आप भी वीकेंड का उतना ही इंतजार कर रहे हैं जितना सारे कॉर्पोरेट वाले?
3: नॉट रियली.
4: क्यों?
3: हम सेल्स वाले हैं तो वीकेंड हमारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट. एवरीडे इज अ वीकेंड.
4: अरे आराम तो करता है ना सेल्स वाला बंदा भी कि वीकेंड पे भी जो है झोला उठा के निकल जाते
3: हैं. ना ना वैसा नहीं है, बट यू आर राइट, वीकेंड इज इम्पोर्टेंट.
2: वेरी इंपॉर्टेंट. 5 दिन चक्की पीसने के बाद बहुत जरूरी है भाई वीकेंड. मतलब आप अपने टारगेट्स लेके मत बैठ जाना सैटरडे संडे को. फिलहाल मैंने जो आपको हिंट्स दिए, आज काजोल का बर्थडे, द मूवी दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट,
3: आई थिंक इट्स गुड.
4: फिर से जवाब दो, मुझे थोड़ा माहौल बनाने दो इस मूवी के बारे में हम जब बात ही कर रहे हैं.
2: अब बताओ.
3: व्हाट
2: अ मूवी नितिन.
3: मोर देन दैट द सॉन्ग्स आर द बेस्ट.
4: बट क्या मूवी है ये. मतलब आज भी देखो तो उतना ही मजा आता है. एंड आई थिंक काजोल ने ये साइड एक्सप्लोर ही नहीं करा. शी केप्ट डूइंग दोज बबली, दोज चर्पी रोमांटिक रोल्स. शी वाज ब्रिलियंट इन दिस मूवी.
3: एब्सोल्युटली राइट. सो दिस मूवी, फ्रैंकली स्पीकिंग, वी वर लिसनिंग दिस एंड माय वाइफ गेस्ड दिस मूवी.
4: अच्छा, वाइफ भी साथ में है आपके? तो दोनों एक ही ऑफिस में हो क्या?
3: नहीं, ऑफिस में नहीं, अभी हम, इट्स 8 o'clock, बूम.
4: हाँ, बट आई थॉट आप वीकेंड पे भी ले जा रहे थे सेल्स का काम, तो मुझे लगा शायद 8-9 बजे तक ऑफिस रहते होंगे.
3: इतने भी वर्कहॉलिक थे.
4: बट व्हाट अ ब्रिलियंट मूवी. व्हेन वाज लास्ट टाइम आपने गुप देखी थी?
3: व्हेन इट वाज रिलीज, उसके बाद नहीं देखी.
4: अच्छा, काफी टाइम हो गया है फिर तो.
3: काफी टाइम.
4: आई थिंक इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू रीवॉच गुप. इट्स बीन अ व्हाइल. एंड फिलहाल कौन सा फेवरेट गाना है गुप्त का
3: जो आप चला रहे हो?
4: मुझे इतना अच्छा लगता है ये गाना. मतलब सडनली मेरे अंदर का विलन जो है वो बाहर आने के लिए बेताब हो जाता है ये गाना सुन के. फिलहाल ऑल टाइम फेवरेट काजोल मूवी.
3: 100%.
4: अच्छा, आपकी भी गुप्त?
3: करेक्ट.
4: चलो जी, वी लेट्स सेलिब्रेट काजोल इन अ वेरी डिफरेंट अवतार. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग नितिन. लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग एंड लेट अस ऑल गेट आवर नेगेटिव साइड्स आउट. आई एम इन माय कलेशी एरा दीस डेज. हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय.
3: Thank you, bye.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: You know, जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आने वाला हो, आप उनका वेट करते हैं, वो टाइम आपसे नहीं गुजर पाता है. प्रॉब्ली यू ट्रैवलिंग समवेयर, देयर इज अ वेकेशन, वो वक्त भी बहुत लंबा लगता है. मंडे से फ्राइडे तक का सफर भी बहुत लंबा होता है. ऐसा मेरे लिए आज अपने ऑफिस से अपने घर जाने का सफर लंबा होने वाला है, बिकॉज आज है फिनाले ऑफ लॉकअप. फॉर ऑल दोज हु आर वॉचिंग द शो, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड फॉर ऑल दोज हु डोंट, भाई रियलिटी शो है, बहुत ड्रामा है, बहुत कलेश है, विच आई थरली एंजॉय. In fact, people who love reality TV, we are in for a treat. Lockup aaj final hota hai, khatam uska. Then we've got Alliance already going on, Traitors coming in, and September mein Big Boss hamari zindagi mein wapas aa jayenge. And is baar rumors hain ki Bhaijaan with King Khan host karenge Big Boss season 20. It's the 20th season. But tonight I'm very thrilled, very excited. I'm just not looking at my Instagram anymore, because I'm sure koi na koi to abhi announce kar dega who won lockup. But I'm very excited for the finale. I get so invested in these shows ke wahan if my favorite player is performing, yahan pe main excited ho jati hu, itni zyada invested hoti hu main shows mein. Filhal there's one thing that I'd like to say here. One person who's very very invested in my Instagram story is Mudassir, and कई सालों से एवरी सिंगल स्टोरी दैट आई पुट ये हमेशा लाइक करते हैं, ये पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आज आप जिम नहीं गए. सो इट्स बिन थ्री एंड हाफ ईयर्स, एंड टुडे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही गेव मी अ कॉल. ही स्टेज इन अबू धाबी एंड इज बिन विद मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर अ वाइल नाउ. 3.5 साल हो गए. वैसे अगर आप अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं, डू इट राइट अवे. 106.2 बिग FM. यू कैन से हाई टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग, एंड दिस वन इज गोइंग आउट टू यू मुदस्सिर.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, ये है बिग थ्रिल, मैं हूँ मानसी, एंड ऑफ कोर्स इसी के साथ टाइम फॉर मी नाउ टू से बाय बाय. बट जाने से पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में यू नो वीक फील करना, स्ट्रेंथ ना होना, कमजोरी होना इज वेरी वेरी कॉमन. स्ट्रेस है, फास्ट फूड है, बड़ी फास्ट, बड़ी भागा दौड़ी वाली हमारी जिंदगी है, राइट? बट आई गॉट द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू. हैव डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, दे हेल्प इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, योर स्टैमिना एंड योर पावर. शेर की तरह अगर आप भी मजबूत बनना चाहते हैं, देन स्टार्ट योर डे विद डाबर शिलाजीत. दीज आर 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स दैट मेक यू फील स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट. आपकी जीत डेफिनेटली विद डाबर शिलाजीत. डू कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. फिलहाल बिफोर आई लीव, वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, डू नॉट फॉरगेट टू गेट इन टच विद अस ऑन our socials, that is 106.2 Big FM on Instagram. You can say hi to me, I'm Mansi talking, and I talk to you every single day, 5 se 9. Filhal, jaate jaate, I'm going to leave you with a movie jiska millennials ko bahut zyada intezaar hai. Ab intezaar zyada din nahi karna hai, 14th ko officially Awara Pan 2 release hone wali hai. A beautiful one, leaving you with Mithun and Sayed Kadri ke baaz.

0: 92. The Beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
7: तुम बीमार हो?
8: नो.
7: तो लेती क्यों?
8: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पर उनको कंट्रोल करते हैं.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

Big 106.2, the beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: तू मुझे चाहे न चाहे ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूं ये मेरे बस में नहीं।